0: है हौसले कहाँ जा को कतलो चाप को चल गो मेरे को जो हौसले माने दिने शर की छे मो सवारे सोदाने सरहदाल बिरावर गनिया शेव देखो दे जारे कफते सर मिले कुरे में बितने मारे सार सग माने माला भावे मावदाला खुदे सार में पियाए माला भावे मावदाला खुदे कोल में कोल वे दिचने दिने शर सोदान आवा बिरावर गनिया शेव देखो दे दें गे मेरा निया कुरे में जिब्राना हाथ वो माने तालिया ब्यावरे काल मेर ये तदस्ते फिर मेरे फरहुदानिया सरदारे वे कुतर में
1: بله وقتی وانا گلگ باشه گوشتی وانا دیگری هستی که واسه بابا نشتی نیم نخص